उजाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाना रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो देया बे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुझ जा फिर सदमे को झेलो, मजा ले लो।

उनके प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ। गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो ओ खेलो ओ खेलो ओ गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो ओ खेलो ओ खेलो ओ कल की बातें कल पे छोड़ो आज मजा ले लो, मजा ले लो।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, गुरुदेव ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, तथा संतों के सत्संग से जीवन की बुराइयां दूर होती हैं। हम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, अतः इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए।

0: जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू या इट्स योर बॉय बंच समेत निकिता गांधी एंड ऐसे सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना और गाना का नाम है जुगनू क्लिंक लेकर क्लिंक फॉर ट्रेवलक एंड पास्ट परफेक्ट इन एलक मोमेंट फॉर द डे
1: पहाड़ी दाते ब्याह हो गया पतली लग
0: या ऑफ द प्लेलिस्ट हियर सो सुखविंदर सिंह
1: के दाल में नमक पल गई

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Jala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन सेफन तखियार और छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह की बड़ी बहन बेटा रायन रामपरिशन की मौसी रोटरडम रोसवेल्ट की रहनी वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जेफन तक यार और छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह की बड़ी बहन रायन रामपरिशन की मौसी रोटरडम रोसवेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पो सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 11 बजे मोरखन एलफ्यूर किए जाएंगे। मोनिटा मेमोरियम के क्रिमाटोरियम लंगनहॉर्स्ट होंदर रोटरडम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-088-477 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार सुकरन सिंह के दुख में शामिल है।

अरिजीत सिंह। हाँ, अरिजीत सिंह दिल जुनून बैंड के साथ, और ये उजाला रेडियो है, उजाला पेंटेनल इंफॉर्मेशन के लिए।

स्टाइल भाई उजाला रेडियो है ये निखावत शेकन मैं सुनिधि चौहान एंड हाजी स्प्रिंगर

Shake It Senya, suni di Chauhan Haji Springwear from Rascals. Ujala.nl हम लोगों का वेबसाइट है फॉर इंफॉर्मेशन तू जाने हैं तो

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है
3: होठों पे सच्चाई रहती है
4: मुकेश जो आप सबके प्रिय गायक थे मेरे बड़े भैया थे मुकेश भैया एक महान कलाकार थे एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टलफेन से परिवार अवतार अकलू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल के आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास, श्रीमती शरीता अवतार अकलू की माँ, माइकल और कृष्ण की नानी, अश्विता की ननिया सास, अर्शानो की परनानी, अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अकलू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। स्वर्गीय श्री रामदेव अकलू के विधवा थी, पहले पारामारिबो खोनखरेबस्ट्रात की निवासी। अम्स्टलफेन से परिवार अवतार अकलू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास, श्रीमती शरीता अवतार अकलू की माँ, माइकल और कृष्ण की नानी, अश्विता की ननिया सास, अर्शानो की परनानी, अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अकलू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अकलू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनखरेबस्ट्रात के निवासी। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज सोमवार की रात में 7 बजे से 8 बजे तक उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मृदालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2:30 बजे वोंसदखांस्टांद हालफदरी किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू, परिवार रामदीन और परिवार अवतार के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन ज़ेफ़न तख़यार औत श्रीमती जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अंग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम ज़ेटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्ण सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कॉम्बे का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ेफ़न तख़यार औत श्रीमती जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अंग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा और जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम ज़ेटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे और पहले पारामारिबो कॉम्बे का रहने वाला था। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दोंदरदखाफन फन ज़ेफ़न tot 8 uur. Uitvaartcentrum Westgaarde ke Moerdalei. Ook Meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me. Aur Arthi ke dah kriya. Aane wale sanichar ke din me 1 baje kiye jayenge zaterdag om 1 uur. Westgaarde Crematorium. Ook Meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरजोरखें समस्त परिवार हीरा के दुख में शामिल।

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

और इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी एंड लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Anjala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akenaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, maar toe, mooiste buitje taakse, heel zoense kega. जब जस कॉन्सर्ट होने वाला है आपके खाते आ रहे हैं आपके शहर में बॉय के दादा दिन एंड बॉय के दादा दिन के साथ

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जैफन तखियार औत स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ सुखदेई सुकरन सिंह जरबंधन के बेटी आम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह के बड़ी बहन छोटकू टोकीर चौधरी की बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी की मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी की मौसिया सास और इलियाना चौधरी और शान चौधरी के आजी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पो सुकरन सिंह के मृत्यु हो गई है। रोटरडम में सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। आम्स्टरडम से परिवार सुकरन सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जैफन तखियार औत स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेई सुकरन सिंह जरबंधन की बेटी आम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह की बड़ी बहन छोटकू तोकीर चौधरी की बड़की सनी बॉबी और शायन चौधरी की मौसी मरियम और नैना चौधरी की मौसिया सास एलियाना और शान चौधरी के आजी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 11 बजे मोरखन दिनसदाह एलोफ्यूर किए जाएंगे मोनिटा मेमोरियम क्रीमाटोरियम में लंगनहॉर्स्ट होंदर रोटरडम। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-088-477 06-33-088-477। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार सुकरन सिंह के दुख में शामिल है।

सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि एक बार फिर अपने नए एल्बम आपकी सेवा में मैं और मेरे साथी लेकर हाजिर हूँ। आपके प्यार, स्नेह और पसंद की वजह से ये मुमकिन हो पाया। अब की बार मैंने अपने को सिंगर्स के साथ डुएट्स, मेरा मतलब है युगल गीत, पेश किए हैं। एक सीडी में मेरे सेमी क्लासिकल फिल्मी गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इस संग्रह में शामिल हैं मेरे पसंदीदा सीनियर सिंगर्स के लाजवाब गाने और कुछ गैर फिल्मी गीत भी। इन गीतों को याद करते वक्त वो जमाना याद आ गया जब इन गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। कुछ दोस्त पुराने आ पहुँचे और जिक्र तुम्हारा चल निकला। आँखों में चढ़ी बरसात बहुत, यादों में ढले नगमात बहुत।

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। गीत आप सुने तलत महमूद की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर और ये उजाला रेडियो है।

कोई जाने ना कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। गीत आप सुने मुकेश जी की आवाज में और फिल्म अनोखी रात से निकाले गए।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। हमेशा की तरह हाजिर हूँ लेकर सुनहरी दौर के सदाबहार नगमे, जिसे सुनकर मन को सुकून मिलेगा। या खुदा, जिस तरह तू रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बतों में, गम को खुशी में बदल दे। जो हमको मिला है मोहम्मद से मिला है।

नाते नबी पेश था कलाम था पयाम सईदी का, इसे रूहानियत अंदाज में भजन पेश है, दर्ज है राम करे सो होए।

करे सो हो ये रे मनवा। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मजहबी और भक्ति संगीत सुनवाए। गजल शौकीन के वास्ते कुछ गजलें चुने हैं, उम्मीद है कि आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे। एक दिल का दर्द था जो रहा जिंदगी के साथ, एक दिल का सुकून था जो सदा हम ढूंढते रहे। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।

आबिदा परवीन की बुलंद आवाज में पेश थी ये गजल। कलाम महान शायर मिर्जा गालिब का था। मिसालें देंगे लोग मेरी किस्मत की, तुम आ जाओ मेरी किस्मत के हिस्से में। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गजल सज्जद हुसैन की मौसिकी थी कमार जलाल आबादी की। रहा नहीं जाता आपके दीदार के बिना, जिंदगी अधूरी है मेरी आपके प्यार बिना। ना चाहते हुए भी ये इश्क दीवाना बना देता है, होठों से छू लो तुम मेरी प्रीत अमर कर दो।

पहली गजल पेश थी श्री जगजीत सिंह की आवाज में। दिल छू लेने वाले गीत सुनवाते हैं, गाने वाले हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी।

दिल छू लेने वाले गीत पेश था मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी और साथियों की आवाज़ों में। तेरी खुशियों का सबब, तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझे, दोस्ती मुझसे और प्यार कोई और से है ना, तो जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी।

0: कैसे जानी,
1: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। अनमोल दो गाना पेश था मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। जहान में जहां में हर तरफ तुम नजर आते हो, क्या क्या हर तरफ तुम ही तुम हो या पूरा जहान तुम हो।

सदाबहार दो गाना पेश था लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। अगला गीत जो हम सुनवाएंगे, इसे आप भी साथ गुनगुनाएंगे, इतना मुझे यकीन है। तो लीजिए लुत्फ उठाइए इस गीत से और साथ में भी खुद गाइए।

कमाल का गीत पेश था। इस गीत को महान कवि भारत व्यास का लिखा दर्स था। अब आइए सुने मन्ना दे और लता मंगेशकर की आवाजों में ये जुगल गीत।

फिल्म आखिरी दांव में से ये दो गाना पेश था। संगीत से सवारे थे संगीतकार मदन मोहन। भरकता गीत सुनवाते हैं गीता दत्त की शोखी आवाज में।

फिल्मी दुनिया में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में अक्सर उन महान फनकारों के बारे में हम बयां करते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के ऐतिहासिक किताबों में अपना छाप छोड़ गए हैं, जिसे आज भी हम याद करते हैं, और नए एक्टर्स भी उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। एक ऐसे ही अदाकार था धर्मेंद्र, जिसके बारे में हम बयान करेंगे। धर्मेंद्र का आइडल था दिलीप कुमार। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना था कि जब से धर्मेंद्र अपने चचा के साथ फिल्म शहीद देखा था, वो बड़ा होकर दिलीप कुमार जैसे एक्टर बनना चाहते थे। तब वो 12 साल का था और एक्टर बनने का ख्याल दिल से कभी निकला नहीं। सालों बाद उनका शादी हुआ, एक बेटा का बाप हो गया था, पर एक्टर बनने का सपना कायम रहा। इसी तरह धर्मेंद्र मुंबई में फिल्म फेयर टैलेंट में हिस्सा लिया। पिछले प्रोग्राम में ये भी बतलाई थी कि फिल्म फेयर टैलेंट में हिस्सा लेने के लिए बस में कई लड़के और लड़कियां भी थे, पर एक आदमी धर्म को गौर से देख रहा था और कहा, आप इतना हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तुम देखना इसी फिल्मी दुनिया में तुम नाम कमाओगे, दुनिया आपकी कदम चूमेगा। सभी लड़के लड़कियां घबराए हुए थे। मुकाबला करने वालों के लिए मेकअप करने का जिम्मेदारी फरीदा का था। फरीदा दिलीप कुमार की बहन थी। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फरीदा दिलीप कुमार की बहन है, तो खुशगवार यादें उनके दिल में फिर उभर आया। धर्मेंद्र ने फरीदा से अपने दिल की बात बतलाए। ये भी कहा, जब से उसने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखा था, तब से ठान लिया था दिलीप कुमार जैसे एक्टर बनने को। अब हम एक गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

0: फिल्म अनुपमा में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र ने अदाकारी किए थे और ये गीत धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र को जब पता चला कि फरीदा जो उनका मेकअप किया, तो वो फरीदा से अपने दिल की बातें कह दिया कि उसने फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया एक दिन दिलीप कुमार जैसे एक्टर बनने को। फरीदा ने कहा, कल मैं आपको आपका आइडल दिलीप कुमार से तारुफ करवाएंगे। अगले ही दिन दिलीप कुमार से मिलने का ख्याल से वो घबराए हुए थे और फिर वो घड़ी आई, दिलीप कुमार उनके सामने खड़े थे। दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि ये लड़का जो उनके सामने खड़े थे कांप रहा था। दो वजह थे, उनकी घबराहट और सर्दी का मौसम भी था। फरीदा अपने भाई दिलीप कुमार से धर्मेंद्र के बारे में बतला चुकी थी कि जब से वो फिल्म शहीद देखा था, वो बड़ा होकर उनके जैसे एक्टर बनना चाहते थे। और कहा था फरीदा कि 12 साल की उम्र से धर्म की ख्वाहिश था, तमन्ना था दिलीप कुमार से मिलने को, और अब उनके सामने खड़े थे तो वो सर्दी की वजह से कांप रहा था। दिलीप कुमार अपना जैकेट उतारकर धर्म को दिया पहनने को, और हाँ, वो जैकेट परेश में तैयार किया गया था। धर्मेंद्र ने कहा, उनके लिए ये जैकेट अनमोल था। उसी दिन से धर्मेंद्र को दिलीप कुमार से ताल्लुकात थी। धर्मेंद्र ने कहा, उसे अब अपने आइडल को इतना बीमार और कमज़ोर देखकर तकलीफ होती है। और कहा धर्मेंद्र ने कि दो महान शख्सियत जिसे वो पसंद करता था, वो थे राज कपूर और देवनन। उनके लिए फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल करना कितना मुश्किल था। पहले हम आपको फिल्म बॉयफ्रेंड में से एक गीत सुनवाते हैं, जिस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार एक पुलिस इंस्पेक्टर का था।
1: आई ग

0: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया
1: आएगो आएगो
2: फिल्म बॉयफ्रेंड का गीत पेश था। इस फिल्म में अहम किरदार में थे शमी कपूर और मधुबाला। इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार पुलिस इंस्पेक्टर सुनील का था, पर उस दर्जा तक पहुंचने के लिए धर्मेंद्र को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पंजाब की पुत्तर खुली हवा में पले बड़े उसे अब मुंबई फरसोवा में एक छोटा सा कमरा मिला था रहने को। उसी दौर नेहती सैस्तह में मनोज कुमार से मुलाकात हुई। दोनों एक ही मकसद से मुंबई आए थे, एक्टर बनने, और अब 2 साल बीत गया था। जिन्होंने फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था मनोज कुमार भी था। दोनों आपस में वादा किया था फिल्मों में एक साथ काम करने को, और जब दोनों एक साथ मौका मिला फिल्म पिकनिक में काम करने को तो धर्मेंद्र बीमार पड़ गया था। प्रोड्यूसर धर्म को 2 हफ्ते दिया संभलने के लिए। 2 हफ्ते बाद प्रोड्यूसर जब धर्मेंद्र को देखा तो उसने कहा कि वो बहुत पतला हो गया और उनका किरदार आर्मी ऑफिसर का था, इसलिए फिल्म पिकनिक में सिर्फ मनोज कुमार को लिया गया। फिर प्रोड्यूसर रमेश सैगल फिल्म शोला और शबनम तैयार कर रहा था तो दोनों से वादा किया था फिल्म शोला और शबनम में अदाकारी करने को, पर जैसे होता आया है जिसने फिल्म शोला और शबनम का फिनांसियर था उसने मनोज कुमार का किरदार अपना नेफ राजन को दिया। यह सुनकर मनोज कुमार तो मायूस हुआ था, पर धर्मेंद्र से कहा, तुम देखना एक दिन हम दोनों की मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। और वो पल जल्द आया फिल्म शादी में जो नेहती तुय शास्त्र में रिलीज हुआ। दोनों मनोज कुमार और धर्मेंद्र इस फिल्म में एक साथ काम किए थे, पर अब हम आपको शोला और शबनम का वो गीत सुनवाते हैं जो धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था।

शोला और शबनम का गीत पेश था जो नेहुद्दीन एनस शस्तक में पर्दे पर दिखाई गई थी। इस फिल्म में अहम रोल में थे धर्मेंद्र और खूबसूरत अदाकारा तारला मेहता। एक बार धर्म कतार में खड़े थे ऑडिशन देने के लिए, तो वहीं आसपास से देवानंद गुजर रहा था। धर्मेंद्र को देखकर उसने मुस्कुराया और देव ने धर्म से कहा, तुम मेहनत करते जाओ, एक दिन ऐसे ही लोग कतार में खड़े होंगे आपसे मिलने के लिए। धर्मेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि देवानंद खुद उनके पास आकर ये कहा था। फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का मुकाबला जीतने वाला था, जी हाँ, धर्मेंद्र। और जिस बस में वो था उसी बस में कई लड़के और लड़कियां थे। उसी बस में एक साहेब धर्म से कहा था, तुम एक दिन शोहरत की बुलंदियों को छुएंगे। वो साहेब था हिदायतकार अर्जुन हिंगुरानी। वही डायरेक्टर ने धर्मेंद्र को लिया था फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में। इसी फिल्म में से आइए सुने ये डुएट जो धर्मेंद्र और कुमकुम पर फिल्माया गया है।

इस फिल्म के बाद हिदायतकार अर्जुन हिंगोरानी ने धर्म को दो फिल्मों में मौका दिया काम करने को, रमेश सैगल्स शोला और शबनम और बिमल रॉय का पेशकश बंदनी। इस फिल्म में थी उनके साथ अदाकारा नूटन। धर्मेंद्र अब दो चार फिल्मों में काम कर चुके थे पर वो अपने काम से खुश नहीं होते थे। अपने ही फिल्म वो पूरा नहीं देखते, थिएटर से पौसों में धीरे से वो निकल जाते थे और मुस्कुराते अपने आप को कहते, वाह बेटा क्या काम कर दिया तूने, और ये भी कहते, मेरे काम पे मुझसे कभी वाह वाह नहीं निकली। चमका पसीना बनके नगीना काली रात बीती। आहिस्ता आहिस्ता धर्मेंद्र का नाम आवाम के जुबान पर था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स धर्मेंद्र का काम से खुश थे क्योंकि उस जमाने में एक्टिंग सीखना का स्कूल नहीं था और धर्मेंद्र नेखतीन शैस्त्र से लेकर नेखतीन फैफ शैस्त्र के दरमियान 20 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में 12 सुपरहिट फिल्में थे और 3 फ्लॉप फिल्में। धर्मेंद्र ने कहा, आवाम मेरे फिल्में पसंद करते हैं, मुझे सराहते हैं, पर उसे खुद की फिल्म फूल और पत्थर पसंद था। ये फिल्म नेखतीन शैस्त्र में रिलीज हुआ था लेकिन उस जमाने की फिल्म शोले जैसे था। और कहा धर्मेंद्र, मैंने अपनी पहली कार खरीदी एक फियात, ये मेरा सपना था, और एक छोटा सा फ्लैट किराया पर लिया। एक महीना के लिए 180 रुपया किराया था। उस जमाने में 180 रुपया बड़ा रकम था। फिर धर्म फखर से अपने वालदैन बीवी प्रकाश बेटा अजय को मुंबई आने को कहा, पर उनकी बाबा को एतराज़ था। वो बेटा का काम से खुश नहीं था। माँ थी जो हमेशा बेटा का साथ दिया। बाबा अपने बेटा से इसलिए नाराज था क्योंकि वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने। धर्म अपने बाबा से कहा, बाबा मैंने फिल्मों में प्रोफेसर का किरदार भी किया है और हम पढ़े लिखे ना होते तो ऐसे किरदार नहीं कर सकता था। फिर बाबा जोर से आवाज दी, उल्लू के पट्टे, मेरा मतलब है असली प्रोफेसर। आखिर बाबा बेटा का मान रखा और अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। अब हम फिल्म फूल और पत्थर का वो गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

इस फिल्म में अहम किरदार निभाए थे धर्मेंद्र और अदाकारा मीना कुमारी। फिल्म फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र पीछे मुड़कर देखा नहीं, बुलंदियों के सीढ़ी चढ़ते गए। इस फिल्म का प्रोड्यूसर था ओपी रलहन, राजेंद्र कुमार का जीजा। राजेंद्र की बहन से शादी किया था। राजेंद्र ने इनकार कर दिया था ये कहकर कि ये किरदार के लिए धर्मेंद्र को लिया जाए, क्योंकि वो कई फिल्मों में काम कर रहा था। फूल और पत्थर के बाद दोनों एक साथ फिल्म आई मिलन की बेला में थे, जिस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार नेखतीफ किरदार था, फिर भी आवाम उसे इस किरदार में पसंद किया। एक बार फिर फिल्म फूल और पत्थर में से हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

फिल्मी दुनिया सुना जिसमें हमने महान शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। अगले हफ्ते के प्रोग्राम में धर्मेंद्र के बारे में हम बातें आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आशा भोसले से पेश है ये गीत।

फिल्म कड़वा में से पेश था ये गीत आशा भोसले की आवाज में। इसी अंदाज में अगला गीत पेश है, गायिका है गीता दत्त।

उमंग भरा गीत पेश था, मदन मोहन का सजाया संगीत था, बोल राजेंद्र कृष्ण का। उनकी निगाहें कुछ ऐसा जादू किया कि लुट गए हम पहली मुलाकात में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। बहल तो जाएगा उसके वादों से मेरा दिल, लेकिन लेकिन चलेगी पानी में कागज की कश्तियां कब तक।

0: ये वादा रहा खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत। शंकर जयकिशन का संगीत रचना था, तर्ज को लिखने वाले थे शायर पंडित विशेश्वर शर्मा और गीत में अपनी आवाज से चार चार लगाने वाले थे मोहम्मद रफी साहब। अब आइए सुने आशा भोसले से अगला गीत।
1: जवान

फिल्म नमक हलाल में से ये गीत पेश था। बप्पी लहरी का सजाया संगीत, बोल शायर अनजान का था। क्यों दिल में बस के दिल को दुखाते हो तुम, किस कदर कदम कदम पे आजमाते हो तुम, हर पल रहते हो आंखों में तुम एक सपने की तरह, फिर क्यों इन्हीं आंखों को छुपाते हो तुम।

फिल्म CID में से ये गीत लिया है। संगीत से सवारे थे संगीतकार उपेन अय्यर, तर्ज को लिखने वाले थे शायर जान निसार अख्तर। मोहम्मद रफी साहब से आइए सुने अगला गीत।

नौ माह पेश था मौसका सचिन देव बर्मन की मौसीकी थी नगमकार था शायर मजरू सुल्तानपुरी। अब आइए सुनिए गीता दत्त से अगला गीत।

शोखी आवाज में आपने अभी गीता दत्त से ये गीत सुना। दिल छू लेने वाले नगमा पेश है, आवाज है मुकेश जी की।

डर्द भरा गीत पेश था संगीतकार शंकर जयकिशन, संगीत से सवारे थे, तर्स को लिखने वाले थे शायर शैलेंद्र। अगला गीत पेश है आवाज़ है लता मंगेशकर की।

अभी आपने लता मंगेशकर की मीठी सुर में ये नगमा सुना। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हैं हम, रुख रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है। जिंदगी का सफर है ये कैसी सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।

जिंदगी का सफ़र है ये कैसी सफ़र, रोंते खड़े हो जाते हैं ऐसे दर्द भरे गाने सुनकर। और किशोर कुमार अपनी आवाज़ से ये गीत में चार चांद लगाए हैं। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त से अगला गीत।

फिल्म वो कौन थी में से ये गीत लिया है। मदन मोहन संगीत से सवारे थे और गीतकार था शायर राजा मेहंदी अली खान साहब। अब आइए सुने हेमंत कुमार और लता मंगेशकर से ये दो गाना।

फिल्म झनक झनक पायल बाजे में से ये गीत पेश था और ये दो गाना सुनहरी दौर का दो महान नृत्य कलाकार गोपी किशन और संध्या पर फिल्माया गया था। प्रोग्राम में आखिरी गीत आइए सुनें।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमा थी निशा।

मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे ठेला ठेला मेला अरे

अब बाटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।